0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी डाढ़ा मियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंध की।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी।

हुकूमत पेट्रोल 4 रुपया 42 पैसा ऐं डीजल 6 रुपया 10 पैसा फी लीटर महांगो करे छॾियो। पेट्रोल जो नओं अघु 380 रुपया 24 पैसा ऐं डीजल जो नओं अघु 409 रुपया 42 पैसा फी लीटर थी वियो। पेट्रोलियम डिवीजन पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोल ऐं डीजल जा नवां अघु 15 सेप्टेम्बर लाइ हूंदा।

सिंध के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में खीमणी गजगोड़ सां ज़ोरदार बरसात गर्मी जो ज़ोर घटिजी वियो। वेझी किरण जे वाकियनि में हिकु औरत फ़ौज, चार ॼणा ज़ख़्मी। कराची, हैदराबाद, उमरकोट, मिठी, कलो, इस्लामकोट, थटो, सजावल, कड़ियो, गंवर, शादी लार्ज।

0: पंज वेरन जे हुन जा गलो कपियल लाश मिलिया। जख़्मी हालत में हथ आयल 18 महीननि जे अश्मीरा अस्पताल में इलाज दौरान दम ॾेई छॾियो। पुलिस शक जे बुनियाद ते औरत जे मुड़ुस खे गिरफ़्तार करे वरितो। वॾे वज़ीर वाकिए जी रिपोर्ट तलब करे वरिती। मुराद अली शाह चयो आहे त वाकियो इंतिहाई अफ़सोसनाक आहे, ज़िमेदारनि खे कानून जे कटण में आंदो वञे।
1: Committee on Government Bill number 32 of 2026, Assessing Government Local Government Bill 2026. Mr. Head of the Special Committee, may please present the report.
2: Sir, I rise to present the report of Special Committee on Local Government Bill number 32 of 2026. The Sindh Local Government Amended Bill 2026. तो इन्होंने सपोर्ट किया है बिल को, एक्सेप्ट फ्यू इशू, और टोटली बिल को इन्होंने सपोर्ट किया है। अब ये बहाना बनाकर इस पर बिजनेस को ओवर रूल करवा रहे हैं। द सिंध लोकल गवर्नमेंट अमेंडेड बिल 2026 मे बी टेकन इन टू कंसिडरेशन बाय द असेंबली एट वन।
1: लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल 2000 may be taken into consideration by the assembly at once. Now I put the motion to the house. Those who are in the favor may say aye, and those who are against may say no. I have it, and the motion is carried.
0: Council jo muddo khatam than te mayor and chairman administrator ja ikhtiyar sambhalinda. Deputy mayor and vice chairman ke council jo convener muqarrar kayo vendo. यूसी चेयरमैन गैर कानूनी दावतुनि जी निशानदेही करे एस बी सी ए खे इदला ॾियण जा पाबंद हूंदा। सिंध असेंबली अपोज़िशन जे गोड़ दौरान मकानी कानून में तरमीम लाइ सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2026 अक्सरत राय सां मंज़ूर करे वरितो। बिल में सुलह वारे फॉर्म जो इज़ाफ़ो, 90 ॾींहं अंदर फॉर्म क़ाइम करण लाज़मी हूंदो। सुलह वारो फॉर्म अवामी मसलनि जे हल लाइ पुलिस सां राब्तो करे सघंदो। बलदाद इदारा इलेक्शन कमीशन खे मुदो मुकमिल थियण खां 120 ॾींहं अॻु चूंडू कराइण लाइ ख़त लिखंदा। बिल जे मंज़ूरी दौरान मुख़ालिफ़ धुर पार्टियुनि जो सख़्त एतिजाज। स्पीकर जे डाइस अॻियां नारेबाज़ी, बाद एजेंडा जूं कापियूं फाड़े छॾियूं। ऐवान मां बि वॉकआउट। मुखालिफ़ दुर्मकानी कानून में तरमीम वारे बिल खे रद्द करे छॾियो। अदालत वञण जो ऐलान। अपोज़िशन लीडर अली खुर्शीदी चयो आहे सियासी आमरत हली रही आहे। असेंबली सेशन में बिजनेस खे हिकु तरफ़ करे हिक तरफ़ो बिल मंज़ूर कयो वियो। सिंध हुकूमत इहो बिल मंज़ूर करे अदालती फ़ैसिले जी बि तोहीन कई आहे। जमायत इस्लामी जे मेंबर मोहम्मद फारूक जो चवण आहे त उहो बिल जमहूरियत दुश्मन आहे, जंहिं ख़िलाफ़ अदालत सां राब्तो कयो वेंदो। लोकल बॉडी एक्ट में अख़्तियार ई न आहिनि। इन तरमीम ज़रे सियासी चूंडियल माण्हू चूंड न थियण जी सूरत में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर बणजी वेंदा। पीटीआई मेंबर शबीर कुरैशी चयो त 2023 में हाउस ट्रेडिंग ज़रे मुर्ज़ा वाहब खे मुड़ियो वियो। वरी उहे ई माण्हू हूंदा त मकानी चूंडुनि में दांधली जो ख़र्चो यकीन में तब्दील थी वेंदो। हू इन बिल खे मुकमल तौर रद्द कनि था। सिंध हुकूमत ऐवान में एम क्यू एम जे रवैये खे गैर जमहूरी करार ॾेई छॾियो। सीनियर सूबाई वज़ीर छजीर महमूद चयो आहे त हर निज़ाम में बहितरी जी गुंजाइश हूंदी आहे। एम क्यू एम अॼु बि पंहिंजी पुराणी रिवायत बरक़रार रखी। खेनि ॼाण हुई त अवाम में हुननि जी मक़बूलियत न आहे, तंहिं करे मकानी चूंडुनि खां भॼी विया हुआ। पूरे मुल्क में लोकल गवर्नमेंट जो निज़ाम सिंध खां सवाइ किथे बि न आहे। इलेक्शन कमीशन केतिरा ई भेरा चूंडुनि लाइ लिखियो, पर पंजाब हुकूमत हुकुम हवा में उॾाए छॾिया। सूबाई घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन जा चवण आहे त एम क्यू एम जो असेंबली में रवियो गैर जमहूरी हो। बिल ते एतिराज़ हो त स्टैंडिंग कमेटी में मामलो उथारियो। सिंध हुकूमत चाहे थी त बलदियाती निज़ाम जो तसलसल बरक़रार रहे ऐं चूंडू वक़्त सिर थियनि। इजलास जा पहिरियां ई तय हुई। एम क्यू एम बदल जे बिल मंज़ूर थियण खां पहिरियां ज़रूर पढ़ियो हूंदो। कंहिं बि सियासी जमात जा रस्ता बंदि करण जो अख़्तियार न आहे। सूबनि जा वॾा वज़ीर एहतियाजनि लाइ सरकारी मशीनरी जे इस्तेमाल न थियण खे यकीनी बणाइनि। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई जे लॉन्ग मार्च ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। अदालत चयो आहे त कंहिं बि सरकारी मुलाज़िम खे एहतियाज में शरीक थियण लाइ मजबूर न कयो वञे। सूबाई हुकूमतूं एहतियाजनि लाइ सरकारी वसीलनि जो इस्तेमाल थियण न ॾियनि।

0: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: This program is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: Khoobsurti hai jo asal raaz. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिन ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
5: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

ਪੱਲਵ ਸਾਲ ਅੱਲਾ ਘਰ ਪੱਲਵ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਲਮ।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Hardiya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News,
5: brought to you by
6: Sona Yuya Granular Mitiye Jo.
7: मुझे तबाह ताए तेरे हमलन में 13 शहरी जख्मी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अज मिस्र जो दौरो कंदो मिस्री सदर से मुलाकात थे हुकूमत पेट्रोल 4 रुपया 42 पैसा डीजल 6 रुपया 10 पैसा फी लीटर महंगो करे छो पेट्रोल जो नव अघ 380 रुपया 24 पैसा है डीजल जो नव अघ 409 रुपया 42 पैसा फी लीटर थी वयो अगन में वाद ते शहरी परेशान आयन हुकूमत के पेट्रोल सस्तो करण जो मुतालबो नौ देरो भरसा पुराने तकरार ता हाजिरी ते वींदड़ बजणा कतल गली खुदा बख्श भुट्टो थाने जी हद सिंह शाख वट पुराने तकरार ता हथियार बंधन फायरिंग करे साहिब गड़ो में हाकिम करो के कतल कयो इतला ते गड़ी खुदा बख्श भुट्टो थाने जी पुलिस पहुंची लाश तहवील में वटी पोस्टमार्टम लाइ नौ देरो अस्पताल मुंतकिल कया

कराची के इलाके सरजानी टाउन में औरतें संदस टे बार गलो कपियल कराची के इलाके सरजानी टाउन में औरतें संदस टे

0: ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में तेज़ बरसाति गर्मी जो ज़ोर घटिजी वियो। वधि किरण वारनि वाकियनि में हिकु औरत फोत, चार ॼणा ज़ख़्मी। कराची, हैदराबाद, उमरकोट, मिठी, कलोई, इस्लामकोट, ठठो, सजावल, कड़ो, गंवर, शादी लाज, दड़ो, जाती, मीरपुर, भठोरो, मातली, नसरपुर, घोड़ाबारी ऐं कोठड़ी समेत ॿियनि इलाइक़नि में वसकारो। डिपलो जे ॻोठु छाछड़ो में वधि किरण सबबि औरत राहकी ज़ाल कांजी फोत, संदस मुड़ुस ऐं ॿ ॿारड़ा ज़ख़्मी। कलोई भरिसां वधि किरण सबबि नींगर असलम चौहान ज़ख़्मी थी पियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: 7:30 AM
1: डायमंड ग्लो जो डीप क्लीन करे और दे चाइनेस चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिता ते बसे नूर मुझो तो
2: सिंधु जो आवाज
4: बुधंदारा असल राज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे रखी करो लई।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज।
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
5: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
6: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
7: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
8: Brought to you by
9: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान
10: वधीक करे छॾी हुसैन जे अमलन जो भरपूर जवाब ॾियण जो ऐलान। सऊदी इतिहाद फौज चयो आहे त हुसी शहरी आबादीअ खे निशानो बणाए वॾी ग़लती कई आहे। हुसैन खे अमलन जो भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। हुसैन गुज़िरियल ॾींहुं सऊदीअ ते हमले जी दावा कई हुई।
11: सऊदी अरब जो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अॼु मिस्र पहुचंदो। मिस्री सदर ऐं ॿियनि सां मुलाकातूं कंदो। ख़िते जी सूरतहाल समेत ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं। UAE जे बि परडे॒ही वज़ीर जा मिस्र कतर ऐं कुवैत जे अहम मुनसबनि सां राब्ता। ख़िते जे तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते मुशावरत कई।
10: तेल ऐं आबनाइरम जे सूरतहाल हाणे तब्दील थी चुकी आहे। ईरान जा शर्त क़बूल कर

ताईं ॻाल्हियूं न थींदियूं। ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार मोहसिन रज़ई चयो आहे त अमरीकी सदर कॾहिं चवे थो त थींदियूं ऐं कॾहिं चवे थो त ॻाल्हियुनि लाइ तयार हुजण जा बयान ॾे थो। संदसि बयाननि ते कंहिंखे गुमराह न थियणु घुर्जे।

0: महंगाई जी घाणीअ में पिसंजंदड़ अवाम ते हुकूमत खे रहम न आयो। पेट्रोल ऐं डीजल जी क़ीमत में घाटे ट्रोड़ वाद। पेट्रोल 380 रुपया 24 पैसा ऐं डीजल 409 रुपया 42 पैसा फी लीटर थी वियो। अघनि में वाद ते शहरी परेशान आहिनि। हुकूमत खां पेट्रोल सस्तो करण जो मुतालबो।
1: नओं देरो भरिसां पवंदड़ बुट में

0: nel शरीफ मौजूद फोती जी उम्र पंजाट वरियन जी लगी रही है सन के कहीं गाड़ी टक्कर है वो है संतरे लाए स्नान लाए कोशिश कर रहा हूं।
1: खेरापुर वेझो नाग निगर समेत टिन जणन के कखे विधो अस्पताल मुंतकिल गोठ अला बचाए जतोई में नौजवान अशरफ जतोई के नाग कखियो गोठ मिठड़ी में भी रांद कंदड़ नीगर काशिफ दस्ती के नांग कखियो गोठ सावण में हारी बेगलिय के जमीन ते कम करण दौरान नांग कखियो नांग जा कखियल टई जणा अस्पताल मुंतकिल।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव सही नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जी एफ एम 91.6।
1: It's 12 PM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
4: Brought to you by
5: Sona Yuya Granular. मिट्टी जो माँ
6: आजम मर जाए होता।
7: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एनडीएम चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मुलाकात। एनडीएम चेयरमैन वज़ीर आज़म के मुल्क में बरसाती सूरत हाल है अगवाट कयल। इंतजाम बाबत ब्रीफिंग डिनी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरसात मुतासर के वार कर हिदायत कदे चो तो मुतासर थियल पुल रस्तन की तामीर के भी यकीनी बनाए वे।
6: लबनानी घरू वजीर जी घरू वजीर मोहसिन नकवी से मुलाकात। बितरफन लागापन समेत खिते के सूरत हाल से गालियों। बिन्हीं अगवाण के मुख्तलिफ शोबन में सहकार वधायण ते इतफाक। लबनानी घरू वजीर के घरू वजारत के ऑफिस पहुंचण ते सलामी भी डिनी वई।
7: सऊदी अरब जो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अज मिस्र पहुंचन। मिस्री सदर एन से मुलाकात कंदो। खिते की सूरतहाल समेत बिन तरफन लागापन से गालू क्यों। यूएए के भी परदेही वजीर से मिस्र कतर ए कोवैत के हम मुनसबन से राबता। खिते की तब्दील सूरतहाल से मुशावरत कई।
6: तेल ए आबना हरम की सूरतहाल हाने तब्दील थी चुकी है। ईरान जा शर्त कबूल करण तई गालू न थन्दियों। ईरान के कौमी सलामती बाबत सलाहकार मोहसिन रज़ई है तो अमेरिकी सदर कदें चवे तो गालू न थन्दियों ए कदें गाल करण लाय तैयार होजन जा बयान संदस बयान ते कंखे गुमराह न थियण घुर्जे।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: あと、
1: मीरजा केस दे अदालती जांच जारी जांच ऑफिसर कमीशन में वधीक दस्तावेज जमा कराए छड़िया डीएसपी सिराज लाशारी पारां जमा कराए दस्तावेजन में शाहिदन जा वधीक बयान डायरी भी शामिल जांच ऑफिसर मीरजा जे साथी एहसान अनीस जो भी हलफनामो भी जमा करायो
2: नौ देर भरसा पुराने तकरार तां हाजिरी ते वेंदड़ ब जणा कतल गड़ी खुदाबख्श भुट्टो थाणे जे हद पुराने तकरार हाकिम कड़ियो के कतल कयो इतलात गड़ी खुदाबख्श भुट्टो थाणे जी पुलिस पहुची लाश तवील में वठी पोस्टमार्टम लाइ नौ देर अस्पताल मुंतकिल कया
1: थारू शाह भरसा मञत में सहड़ा माइनर माम पीरसन जे लाश जी सुञाणप थी वई पीरसन जी सुञाणप कंडियारो वासी अलारिनो कोकर जे नाले सां कई वई कारण मालूम न थियो थाणो बुलाकान भरसां नामालूम शख्स जो चिचिरियल हालत में लाश थायो आहे पुलिस मूजिब फोती जी उमर 65 वरियल लग ॿुधाई रही आहे पीरसन खे कंहिं
2: कराची यूनिवर्सिटी जे प्रोफेसर खे मारे केस में कोनेन शाह जी ज़मानत मंज़ूर मलीर जी अदालत में प्रोफेसर आरिफ साकीअ खे धमकियुनि ॾियण वारे केस जी ॿुधणी थी जवाबदार कोनेन शाह जी ज़मानत 20,000 जो हुकुम ॾिनो

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मठियारी और मठियारी की आवाज।
3: जीए FM 91.6।

आपसे लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद है। इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ लातादार सी बातें करने वाले और जाहिर सी बात है डीएस स्किन प्योरी क्रीम के बारे में भी चर्चे होने वाले। चर्चे होंगे तभी तो आपके थोड़े बहुत से खर्चे होंगे ना। थोड़े बहुत से क्या मतलब, अपने ऊपर खर्चा किया करें, अच्छी बात होती है। और अगर आप हाँ जी हमारे साथ से जुड़ना चाहते हैं तो तरीकेकार क्या होंगे प्रोग्राम के, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी अंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहीं गिवेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होटो पर 440 और किस्मा लाने का काम करेगी बैजान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होटो पर 440 और किस्मा लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं और आगे से प्रोग्राम हमारे पास मौजूद है जी एक बहुत ही खूबसूरत सा कसीदा। तो हम ऐसा करते हैं प्रोग्राम की स्टार्टिंग में एक बहुत प्यारा सा कसीदा सुन लेते हैं, उसके बाद वापस आप लोगों से मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, तो इस्तेमाल कीजिए और हमेशा खूबसूरत होते रहिए।

साहब, आप भी बहुत ही खूबसूरत सा कसीदा जिसे हम सब मिलकर सुन रहे थे और इसके साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें होंगी, लेकिन साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो शामली प्रोग्राम कैसे होने वाले हैं ये भी आप लोगों को जरा बताएंगे। तो अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप ऐसा करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है ना आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है वो जरा आप लोगों को बता दे रहे, ताकि अगर आप हमें मैसेज करें शामली प्रोग्राम हो जाए तो आज का सवाल आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर आज के टॉपिक की बात की जाए तो मेरा सवाल आप लोगों से कुछ यूं होगा कि आप सारे लोग मुझे बताइए। हाँ भाई, हम बहुत सारी ख्वाहिशात कर लेते हैं अपनी जिंदगी के अंदर कि भाई ये भी हो जाए, काश ये भी हो जाए, काश ये भी हो जाए। और जब ये हम छोटे होते थे, बच्चे होते थे, तो हम ये ख्वाहिश बहुत ज्यादा कर रहे होते थे कि काश पेशन जो मी वजे हाँ बिल्कुल यो काश तो हर कहीं पानी जिंदगी में मुख्य लगे तो लाजमी कर तुम्हें आज मुख्य यू बुधायो अगर वो काश तो मुझे पूरा थी वने यानी कि हाँ पेशन जो मी वसे तो तुम्हें केतरा पैसा उतां खणंदा यानी कि असो यू हों बाबा पैसन जो मी वसे तो असरा पैसा खणंदी तो तुम्हें मुख्य बुधायो अगर हाँ पैसन जो मी वसे तो तुम्हें केतरा पैसा उन मी में खणंदा। ठीक है, अगर आप हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनना चाहते हो, शामली प्रोग्राम होना चाहते हो तो ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज ही नाम आप सर्च करेंगे आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। वहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, कर देंगे तो पोस्ट को लाइक किया करें। लाइक करने से ये होता है कि भाई हमारी जो पोस्ट होते हैं ना वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो अगर आप ही चाहते हैं भाई आपके साथ साथ बहुत सारे लोग मजीद हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहें, उनको भी पता चले कि भाई यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम की चर्चे हो रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप लाजमी लोगों तक हमारी पोस्ट को पहुंचाइए। ठीक है, दोस्तों को भी मेंशन कीजिए, उनको भी पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए अवेलेबल हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए अगर पैसों की बारिश हो जाए तो आप उस बारिश में से कितने पैसे उठाएंगे। ठीक है जी, और उसके साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आप लोगों को डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है, यानी कि अब तो भाई डबल मजे ही आप लोगों के। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डी स्किन का फेस वॉश हम लगाएंगे, लेकिन क्या भाई क्वालिटीज हैं डी स्किन के फेस वॉश की, तो आप लोगों को मैं बताऊंगी भरपूर पूरे प्रोग्राम में वो तमाम बातें जो कि जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। कई मरतबा मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनको कख पता नहीं होता अपनी स्किन के बारे में, लेकिन हाँ उनको जो भी प्रोडक्ट बताया जाता है ना वो इस्तेमाल करने लग जाते हैं। और जो भी प्रोडक्ट आपको बताया जाए उससे पहले आप उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज जान लें, आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें तो ये क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आपकी स्किन सेंसिटिव हो या फिर आप अपने चेहरे पर कोई भी प्रोडक्ट आसानी से नहीं लगा पाते हैं, तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है ना तो उसके ऊपर वैसे भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ऐसे उठाकर सारे प्रोडक्ट्स नहीं लगाने होते हैं। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ये चीजें आप जरा उसके अंदर देखा करें कि वो ऑल स्किन टाइप के लिए है या फिर नहीं। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जिक्र आता है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये जनाब मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार की गई है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की यही बात मुझे खास बनाती है डी स्किन को कि भाई ये मेडिकेटेड फार्मूला है जिसे हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। हर स्किन वाला लोग जो है ना वो आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगा पाएगा, चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोगों के लिए तैयार की गई और इस तरह तैयार की गई है कि इसे हर इंसान लगा पाए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत सारी बातें हैं, सारे प्रोग्राम में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं तो बिल्कुल आपके फीडबैक्स की जाने भी आ जाएंगे। आपने बस पोस्ट को लाइक और शेयर जो है ना वो जरा कंटिन्यू रखना है। और एसएनएली भुगटी भाई में सबसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं लाड़काना गोठ रूहल खान भुगटी खान एसएनएली भुगटी असा के ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया भाई जान। और फरवा कहती है अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, हाय आपी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूं फरवा, बताएं कैसी हैं? और फहीम शेख हमारे साथ ही लिखते हैं कि विसरे सारो लोग शालन विसरे तू तो के केडो मु सांढियो आए सा हमें, अस्सलाम वालेकुम मौलाली सलामत अदा छा लाए खुश आयो सफत चा को स्लेट कल मस जी डबी असा भी रुलंदा फिरंदा अची गया सी, प्रोग्राम तो लाजवाब आए हमेशा जी आम आवांगे, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। और फरवा कहती है आप ही अर्ज किया है कैसे भुला देते हैं लोग तेरी
तेरी खुदाई को, या रब मुझे तो तेरा बनाया हुआ एक इंसान भुलाया नहीं जाता। ओके ओके, वेरी नाइस। अच्छा चाचा खालिद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। कहते बेटा सिडो हाउ आर यू, हो फाइन। जी माँ सब ठीक है, ताम बताया कि आयो। कहते हैं थैंक्स फॉर कमिंग टूडे इन डी स्किन ब्यूटी शो। मैंने तो आना ही था, क्या मतलब मैंने नहीं आना था। चले बहुत शुक्रिया, आप भी आ चुके हैं। और रशीद कोजू भाई भी सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और आप हमें हैदराबाद से सुन रहे हैं, थैंक यू। अली रजा है जी, अली रजा भाई हमें बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जी फहीम भाई लिखते हैं कि भाऊ जैसा फरमाइश नकन आसी जे सफा भला भारत ही आया आयू। ओए बाबा ओए सब रोज भला भारत ही अचो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करता रहो। और कहते हैं तेरा हाथ हो सारी, फिर क्या ये जहां तेरे

0: नवाब अकेले अकेले. अच्छा आप आ चुके हैं अकेले अकेले. सही कहते कैसी आप आज आपका सर खाऊं तभी खाऊ ठीक ठाक है. आप हमें सुन रहे थे और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही स्किन ब्यूटी क्रीम का भी जनरल स्टोर पर मिलना जरूरी है क्योंकि बस आप जाएंगे और परचेज करके आ जाएंगे. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो डी स्किन फेस वॉश हो ये दोनों चीजें आपकी खूबसूरती को बढ़ा देंगी. जनाब तो जाइए परचेज करके आइए और टॉपिक को जरा फॉलो करते जाइए और यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानब जाए और आपने कहीं नहीं जाना हमारे साथ मौजूद रहिएगा. ये बातों के सिलसिले को जारी और सारी रखा जाएगा पूरे पूरे 3 बजे तक. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इस्तेमाल कीजिए और हसीन होते जाइए.
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो.
2: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम. अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग.
1: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़.
7: ओ पिता जा पिता पिता ते
1: सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: आप सुन रहे हैं जे FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज, सिंध।

0: FM DAFM 88 Network Sindh ki Awaaz
1: DAFM 88 Network Sindh ki Awaaz

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली मोरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से। यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आज खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं, हमेशा खूबसूरत बनना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए तैयार की गई है। और इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वॉश इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियां हासिल करते जाइए। अच्छा तो यहाँ पर आते हैं जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जाना आप लोगों के लिए जरूरी बात बन जाती है। मैं वैसे भी आप लोगों को कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट का इंतखाब करें तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि भाई आप लोगों के लिए तैयार फार्मूला मतलब इसे तैयार किया गया है स्किन से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं ना, बिल्कुल उन्होंने बनाई है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स है, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा अरबुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें मिलकर जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार कर चुके हैं। डी सोच रहे हैं कि हमारी स्किन सेंसिटिव है, यदि इसे सूट नहीं करता तो क्या हम लगा सकते हैं? चाहे आप खवातीन नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर तरह की स्किन के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ साथ एक और बात भी आप लोगों को बताते चले, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स का मैं जिक्र करती हूँ ना, तो ये जो चीजें हैं यानी कि विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स, ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 अंदर यस उन्हीं में से एक है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालकात में भी मिलने वाला प्रोडक्ट है, तो बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, ये जनाब ऐसा कि स्किन के अंदर काम करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सी खवातीन को जो कि भाई बड़े महंगे महंगे फेशियल्स करा के आती है, और महंगे महंगे फेशियल्स कराने के बाद जो उनको अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है बहुत सारे महीने के बाद, और माइक्रो बीट्स जो है ये वैसा ही काम आपकी स्किन के ऊपर करने वाले हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि ये आपके चेहरे पर फेशियल का निखार देने वाली एक नाइट क्रीम है। यानी कि अब ऐसा वाला सीन हो जाएगा कि आपकी खूबसूरती जो है ना वो बढ़ती रहेगी, आपके पैसे भी थोड़े कम खर्च होंगे और आपका टाइम भी बचता रहेगा। बिल्कुल ही मुनासिब सी कीमतों में आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, तो इसे मुझे ये लगता है कि फायदा उठाना चाहिए, और फायदा उठाइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ दो रातें अगर आप इस्तेमाल करते हैं मुकम्मल, तो आपके चेहरे पर अच्छे खासे रिजल्ट आपको नजर आना स्टार्ट हो चुके होते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम मर्द हजरात तीन हर कोई आराम से इस्तेमाल कर सकता है, तो इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरती का ख्याल रखते रहिए। वैसे भी अगर आप अपनी खूबसूरती को सही वाले प्रोडक्ट नहीं देंगे, अपने चेहरे को नहीं पहचानेंगे कि भैया के चेहरे को किस चीज की नीड है, हुसन कैसे मिलेगा, तो अगर आप भी परेशान हैं, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है ना, जाइए परचेज कीजिए और इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अच्छा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ मैंने बताया कि डी स्किन फेस वॉश भी मार्केट में इन हो चुका है, तो डी स्किन का अगर आप फेस वॉश यूज करना चाहते हैं, क्योंकि कई मरतबा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम क्रीमें नहीं लगाते हैं, चलिए अगर आप क्रीमें नहीं लगाते हैं तो आगे देखिए और फेस वॉश की इतना प्रीमियम ताजा खुदरा इतना क्यों बताते हैं। बिल्कुल जी इस्तेमाल की सीरम से तैयार किया गया है, आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है और आपकी स्किन को क्लीन करता है। तो डीपली क्लीन अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी स्किन होनी चाहिए, तो डी स्किन फेस वॉश का यूज तो बनता ही है। और डी स्किन का फेस वॉश जो है ना, ये बड़ी कमाल की चीज, तो इसे मैं चाह रही हूँ कि आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, चाहे आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं, डी स्किन फेस वॉश लगाएं, भाई हर तरह से आपकी खूबसूरती आपको वेलकम कर रही है, तो आप भी सर अपनी खूबसूरती को वेलकम कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश का यूज करते जाइए। अच्छा बहुत से लोग इस चीज को लेकर परेशान होते हैं कि भाई हमारे एरिया में तो मिल नहीं रहे हैं प्रोडक्ट, तो हम क्या करें? भाई आपके अगर एरिया में नहीं मिल रहे प्रोडक्ट तो आप घबराते क्यों हैं? आपको जो नंबर बताऊंगी ना, बस उन नंबर के ऊपर आपने रब्ता करना होता है, और जैसे ही आप रब्ता करेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल करा दिया।

जाएगा। तो जल्दी से डायल कीजिए 03125025907। बड़ी 312 पंजाह पंजवीह 970। एंड योर नंबर है 03273834309। बुड़ी 332 टेहतर चौरासी 309। ये नंबर जी तुम डायल करें करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराए सको था। आसानी है बाबा तुम्हारे लिए मार्केट में एड़ा भला भला प्रोडक्ट्स अची वाया है। वनो वी चो ए खूबसूरती को ख्याल रखो। उनके अलावा मामा का सवाल पुछो है जी प्रोग्राम में तो तमाम मुख्य बुधायो पया फर्ज कर नंढपण में असा चवंदी अल्लाह साई पैसों मी वसा तो बिल्कुल अगर आज आप ऐसा मुझे मतलब बताइए कि हाँ जी आज अगर पैसों की बारिश हो जाए तो आप उस बारिश में से कितने पैसे उठाने वाले हैं। हाँ जी ये बात मुझे बताइए। और साथ साथ आप मुझे 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं तो फेसबुक वाली जितनी भी ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है पोस्ट को जरा ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दिया करें। ज्यादा से ज्यादा वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगा। बहुत सारे लोगों को हम ये बता पाएंगे कि आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश यूज कीजिए और खूबसूरत हो जाइए। ओके जी तो नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और मुझे जरूर बताया करें कि कहां कहां पर अवेलेबल कराने अभी बाकी हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हर जगह अवेलेबल हो चुके हैं। लेकिन हाँ अगर आपका सिटी आपका गांव रहता है तो क्यों रह रहा है भाई। नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए, अवेलेबल कराइए और खूबसूरत हो जाइए।

आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी फीडबैक्स की जाने बजाते हैं, कौन सी बातें चल रही हैं देखें तो जरा। अच्छा पोस्ट पे लाइक को शेयर करते रहिएगा। यहाँ पर एस एन आर बानी हमारे साथ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सलामदर। ओ माय फेवरेट आरजे मेडम मुस्कान जी, कैसी आप? मैं भी आ गया, वेलकम। आपको भी वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। सालार सिकंदर हमारे साथ मौजूद है, सालार सिकंदर आपको खुश आमदीद कहा जाता है। आसिफ भाई कहते हैं कि भाऊ गानों तो बधाए जो बबई तो कसीदो फरमाइश कर कसीदो सा प्रोग्राम जो स्टार्टिंग में लगाईंदा है तो सुभाणे तव्हां जे लाइ हलाईंदासीं, ठीक आहे। और कहते कि भाऊ पैसों की बारिश किस इलाके में होगी, हर जगह ही होने वाली है। तैयारी पकड़िए जरा आप। अच्छा मौलाई मुजाहिद बोजदार लिखते हैं कि टॉपिक अगर पैसों की बारिश हो तो मैं जब तक पैसों की बरसात बंद ना हो तब तक उठाता रहूंगा और बाद में गिन के बताऊंगा। ओके ओके, वैसे लॉजिकल बात है। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं कि मैं पैसों की बारिश से बस इतने पैसे उठाऊंगा जिससे मैं, अच्छा सही बात है भाई, अच्छी बात है। और यहाँ पर किशोर भाई कहते हैं कि सलाम अदा स्मार्ट आयो वा, बस चाय पानी जो इंतजाम कर बाकी आ फुल लाया। वो भी पिए चू। मजाक मजाक बिल्कुल ताकि चाय प्यारी दासी बाबा थदो भी प्यारी दासी। अच्छा उनके अलावा साजिद अली कहते हैं संजी रानी सबकी, हाँ जी हाँ जी बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? साजिद भाईजान प्रोग्राम सुन रहे हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं।

हाँ जी, कभी कभी वाकई में चीजें भूल जाते हैं, मुझे याद नहीं रहता हो सकता है, वैसे मैं खुद ही सोच रही थी पीछे किए थे या नहीं किए थे। चले बहुत शुक्रिया। अच्छा गाना सुन रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा। बिल्कुल कोशिश किया करें प्रोग्राम में, अगर आप मुझे फरमाइश कर रहे हैं तो गाना ऐसा होना चाहिए जो प्रोग्राम में चलने जैसा होना चाहिए, यानी कि कई मरतबा आप ऐसी फरमाइश करते थे, थोड़ा सा मरा हुआ गाना होता है तो जिंदा जिंदा गानों की फरमाइश किया करें। अच्छा इरम भी हमारा शो सुन रही है, इरम थैंक यू वेरी मच, बस दुआ कीजिएगा। जाकिर अहमद हमारे साथ है, जाकिर अहमद भाई आपको वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया के साथ। गोट मोहम्मद तैयब थे बुखा हबीबुल्ला थे बू हमारे साथ है, तुम्हारा जो शो वेरी नाइस आहे, सॉन्ग बुधराए जो शमन जो, बिल्कुल शमन जी गाने जी फरमाइश तांजी पूरी कदा सी। अच्छा अच्छा खाले तुम भी पैनल से मौजूद है, तुम भी गाने जी फरमाइश कर सो कड़ो गानों फरमाइश कर। और कहते हैं कि आप आती हैं तो शो करने टाइम अच्छा पास हो जाता है, बाकी दो दिन से आपने अपनी परंपरा नहीं निभाई बस मैं जरा सैडी गाने सुनकर बड़ी बेजार हो चुकी हूँ, तो जरा आप अपनी चॉइस को चेंज कीजिए। तो अताउला मरी हमारे साथ ही विलेज रमजान मरी मीरपुर खास से आप हमारा शो सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया जी। मीरपुर खास में हर जगह डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, तो जाइएगा और परचेज करके आइएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी मुझे जरा बताइए, ताकि मुझे पता चले कि कितने सारे प्यारे प्यारे लोग हैं जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला महर हमारे साथ ही मीरपुर खास से कहते हैं कि डी स्किन अच्छी क्रीम है, मेरी फैमिली इस्तेमाल करती है, ये देखें भाई। अब्दुल्ला भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं, इस्तेमाल करते रहिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। वैसे अब डी स्किन का फेस वॉश भी मार्केट में आ चुका है, तो वो भी ट्राई करके देखिएगा।

स्किन की डॉक्टर बन जाऊं तो आराम से बन सकती हूँ. आज मुझे बड़ी नॉलेज हो चुकी है. तो बिल्कुल आप देश सिंह ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा. अच्छा स्मार्ट भाई लिखते हैं कि टॉपिक आप सिर्फ एतरो पैसो कर दस जेतरो अंबानी वटा है बस बस एतरो बस तई था चो. चलें क्या बात है. गाना एंजॉय कीजिए और यहाँ टाइम हो चुका है जरा न्यूज ब्रेक ही जाने जाएंगे. उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे. वापसी जल्दी आप लोगों के पास. सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट डिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए.

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 2 PM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
5: Brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
7: बचे रहता है बरामद में वधीक मुल्की मईशत तरक्की जो बुनियाद बनायो रवायती शोबन से गड बेन शोबन के भी आलमी मंडी में बरामद लाय तैयार किया पे वे रंडकू खत्म कई वजा।

0: अमेरिका ईरान सां जारी जंग में 18 फौजियुनि जे मारजण ऐं 417 ज़ख़्मी थियण जी तसदीक करे छॾी। 18 जंगी जहाज़ ऐं हेलीकॉप्टर बि तबाह थियण जो एतिराफ़। 30 ड्रोन बि तबाह ऐं हथियारनि जे ज़खीरे में बि घटिताई थियण जो एतिराफ़ करे छॾियो। ईरान सां जंग में थियल नुक़सान जे कांग्रेस पारां तयार कयल रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट मूजिबि ईरान सां जंग सबबि अमेरिका जे हथियारनि वारे ज़खीरे में घटिताई थी आहे, जंहिं जी बहालीअ में रंडकूं आहिनि। हथियारनि में वाधारे लाइ घणो वक़्तु लॻी सघे थो। ईरानी हमलनि जे नतीजे में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, यूएई, इराक, उमान ऐं उर्दन में मौजूद अमेरिकी अॾनि खे बि वॾो नुक़सान पहुतो आहे। जंगी जहाज़नि ऐं हेलीकॉप्टर जो बि वॾो नुक़सान थियो आहे।
1: तेल ऐं आबनारुनि जी सूरताल हाणे तब्दील थी चुकी आहे। ईरान जा शर्त क़बूल करण ताईं ॻाल्हियूं न थींदियूं। ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार मोहसिन रज़ई चयो आहे त अमरीकी सदर कड॒हिं चवे थो ॻाल्हियूं न थींदियूं ऐं कड॒हिं ॻाल्हियुनि लाइ तयार हुजण जा बयान ॾे थो। संदसि बयाननि ते कंहिंखे गुमराह न थियणु घुर्जे।
0: लुबनानी घरू वज़ीर जे घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां मुलाक़ात। ॿिनि तरफ़नि लाॻापन समेत खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही अॻवाननि जो मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। लुबनानी घरू वज़ीर खे घरू वज़ारत जी आफ़ीस पहुचण ते सलामी बि ॾिनी वई।
1: आईन में अख़्तियार ऐं हदूं वाज़े थियल आहिनि। अख़्तियारनि जे इस्तेमाल में आईन खे हर सूरत में मथां रखणु घुर्जे। वफ़ाक़ी आईनी अदालत जे चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो त आईन ते अमल करे मुआशिरे में इस्तेहकाम आणे सघे थो। नई अदालती साल में इंसाफ़ जी फरहमीअ वारो अज़म वरजायूं था।

0: अवरी हाणे अवां खे परेशान थियण जी का भी ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से दुलेला केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे हिकत में मेडिकल स्टोर जी सहूलत पिण मौजूद आहे। एखा शाम 5 वगे मो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो।
1: जो आवाज़ संगीत जो आवाज़ हैदराबाद 0.6 जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

स्टोर से कौन मिली रही आए त जेको नंबर बुधाया थे नंबर ते रात तो कयो ना चेंज हली मैसेज करन के बुधायो भाई साहब जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल आसानी से आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो जाएंगे। खूबसूरतियां हासिल कीजिए, खूबसूरत बने रहिए क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमारी स्किन बड़ी सेंसिटिव है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते हैं, तो आप क्यों घबराते हैं, आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी बात कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये जनाब एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और मेडिकेटेड फार्मूला तो इसका मतलब ये है कि भाई इसे हर कोई इंसान जो है ना वो आराम से इस्तेमाल कर सकता है। और स्किन के डॉक्टर्स ने मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया है तो बस गाली खत्म थी वही ना बाबा साहब। तो तव्हां जी स्किन अगर सेंसिटिव आहे या फिर कॉम्बिनेशन टाइप आहे केड़ी भी स्किन जी मथा तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो नालो तव्हांखे खबर हुजण घुर्जे, अगर तव्हां मार्केट वञो था परचेज करण वञो था त डी स्किन ब्यूटी क्रीम नालो वठी करे तलब कयो। ठीक आहे, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी थोरी अगरि निशानी तव्हांखे ॿुधाई वञे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे मथां हिकु डॉक्टर माइक जो फोटो अथव, ओ इहा अथव डी स्किन ब्यूटी क्रीम। बिल्कुल ही सुञाणे वञो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे मथां डॉक्टर माइक जो फोटो आहे, यानी कि डॉक्टर्स मिली करे तयार कई आहे तॾहिं डॉक्टर माइक जो फोटो आहे, जेका सोनी डॉक्टर हुन जो। तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था, डी स्किन तव्हांजी बि ख़ूबसूरती खे सफ़ा नेक्स्ट लेवल ते वठी वेंदी। ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती अगरि थोरो तव्हांखे परेशान करे रही आहे, तव्हां पहिरियां त ख़ूबसूरत हूंदा हुआ पर वक़्त जीअं गुज़रे पियो तव्हांजी ख़ूबसूरती थोरी डिम थी वई आहे, तव्हांजी स्किन थोरी मतिलबु बेजान थी वई आहे, बेरोनक थी वई आहे, तव्हांजे चहिरे ते जेको निखार आहे ग्लो आहे उहो कॾहिं ग़ाइब थी वियो आहे, त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था। छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल खां फॉरहेड्स आहिनि, वाइट हेयर जो हल आहे बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ दो दिनों में वाजे नतायज आपको देने वाली है, आप लाजमी इस्तेमाल करके देखिएगा। जदीद अज्जा इसके अंदर एड की गई है जैसे कि विटामिन ए बीट्स, माइक्रोबीट्स फार्मुलेशन, अल्फा आर्बुटीन, कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, ये तमाम क्रीम के अंदर एड की गई है। और ये क्रीम रात की स्किन के होने के लिए बहुत सारी जो स्किन की भाई आपके चेहरा ना स्टार्ट हो चुके होते, काफी ज्यादा रिंकल्स आ चुके होते हैं, तो उनके भी आपको महफूज रखने वाली है। आगे इस नाने में क्रीम आज भी पहले नंबर पर है और आपकी जल्द की साख्त बेहतर बनाएगी, आपकी स्किन जो है वो आपको एहसास होगा कि भाई बहुत खूबसूरत होती जा रही है और स्किन नरम और मुलायम हो जाएगी, सॉफ्ट करना चाहते हैं तो डी स्किन इस्तेमाल कर यूज देखिए, जो कहते हैं गाल कोने का तमाम फेस वॉश लगाए सको, पॉल्यूशन वगैरह ये तमाम चीजें आपकी स्किन के लिए आपके चेहरे में हिस्सा बनाना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और उसके लिए आपके पास डी मौजूद है जो आपकी रूटीन में एक बेहतरीन इजाफा ला सकता है, चेहरे को आएगा साफ सुथरा।

और हाँ, पंजाह पंजवीह नव सौ सत ही नंबर अगर बंद हो जाए रिसीव न थे 8430 84309 ही जी तमा वणो बस पांच से पांच

मैं पैसों से मैं एक बड़ी फैक्ट्री खोलूंगा और लाड़काना के सारे चिंची ड्राइवरों को चिंची छीनकर उनको फैक्ट्री में काम दूंगा। इो भलो आ, इो सुठो मस्त आइडिया। और उन खां अलावा अच्छा हिदायतुल्ला कहते हैं सिद्रा अब आपने हानिया आमिर का सॉन्ग सुना, मुझे तो मजा नहीं दे रहा था, बस पता नहीं क्या था, पता नहीं क्या था। और उनके अलावा साजिद भाई कहते हैं दोस्त मोहम्मद ताबिश भुट्टो, मोहम्मद बाकिर और शाकिर भुट्टो गाने जामिन जो गानो, अच्छा चलो जामिन जो गानो को ललाईंदा। दर्दी दिल कहती दिल अलावा चाचू चए तो नंढपण में त अञा अवां भी आयो बेटा, हा मुझे अञा बचपन हले तो, सही गाल है। और मुजाहिद बोजा लिखते हैं कि सिडो सिंधी में बात करती हो, उर्दू में बात करती हो, थोड़ा बलोची भी बोला करो, मां ठाई वजी सिद्रा मुस्कान इंगो भी आ। बस

अच्छा सदाम अली हमें सुन रहे हैं, सदाम अली भाई आपको भी खुश आमदीद हो गया। फैसल अहमदानी हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम फैसल कहते हैं। बेशर आबाद बोरी खां फैसल अहमदानी, थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम कहते हैं आपको बहुत शुक्रिया के साथ। असां के भी याद कर बिल्कुल भाजू मोहब्बत हुए तहां प्रोग्राम बुध पया। नसीम भा कहते हमारा गाना नहीं प्ले करती, कहानी सुनो जुबानी सुनो, मां कोशिश क्या थी गानों हलाने की।

असां बि ॿार ॿार चई थकिजी पियासीं एतिरो मतिलब हिन में बार बार लॻे पियो वाक़ई चाचा कहते आहिनि की तव्हांजा हुकुम हलंदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जा बंडल ख़रीद कंदासीं कयो बाबा ईअं कयो ईअं सफ़ा ईअं गोदाम खाली आसिफ भाई कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम और फेस वॉश नूरियाबाद में दस्तियाब है या नहीं ये तो आप नंबर के ऊपर राता करके उनसे मालूमात लीजिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश नूरियाबाद में मिल रहा है या नहीं तो वहां पर भी आप अवेलेबल करा सकते हैं जल्दी से अवेलेबल कराए नूरियाबाद के सारे लोग आप यूज कीजिए ठीक है हिदायतुल्लाह कहते हैं वैसे गर्मी बहुत है पानी वाला मी वैसे तभी शुक्र करूंगा मैं या भी गाला है वफा शेर जादो मक्सी हमारे साथ हैं भाई आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है बहुत शुक्रिया अच्छा दर्दी तुल कहते हैं टॉपिक कोई हिसाब नहीं सोच रही हूँ लंदन का वीजा जितना अच्छा अच्छा दोनों जाएंगे कहती है लेकिन फिर ये भी है कि पैसों की बारिश कौन करेगा तो गाना ना बुद्धू थी मैं बारिश कर दूं पैसे की शायद वही कर ले और अलीजा भी हमारा शो सुन रही है बहुत शुक्रिया अलीजा और साकिब अली भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं मैं मायरा हूँ अच्छा मायरा हमारे साथ है कैसी हो शो आपका नाइस है मैं आपका शो बहुत इंजॉय करती हूँ थैंक यू वेरी मच मायरा अच्छा ये ओपी मिल हमारे साथ है ओपी मिल वालेकुम अस्सलाम आपको वेलकम हो गया

0: प्यारो सब खां बाबा गाल थई सिधी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइण वारा माण्हू सोणा थी विया आहिनि सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ऐं छा था चओ हाय मुंहिंजे हुसन जी छा ॻाल्हि आहे आऊं छा ॻाल्हि कयां जॾहिं खां डी स्किन जे प्रोग्राम में आयो आहियां आसूं टपकी प्रोग्राम में अचण सां आसूं टपकी पई वाह साईं वाह इस्तेमाल कंदा त पोइ सोचो किथे कमु पहुचंदो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तव्हां इस्तेमाल करे ॾिसजो सोणा सोणा थी वेंदा उफट मरी वेंदासीं जाई ॿुधायो वेठा हुजो टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो वापसी जल्दी मोटी अचां थी तव्हां करीने में जो हिते वेठा हुजो सफ़ा हिते जाते वेठा आहियो ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटूं था सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाई टेंशन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन ब्यूटी क्रीम के चर्चे हैं बाबा जाइए और जरा खर्चे कीजिए अपने ताकि खूबसूरत हो जाए
1: हक सच जो आवाज़ गीत संगीत जो आवाज़ जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो बुधंदा रहो
2: इट्स 2:30 पीएम This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream जो deep clean करे और दे चार गुना brightness चमक ऐसी diamond skin जैसी Heme Diamond Glow Bleach Cream
4: This program is brought to you by
5: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
6: Khoobsurti jo asal raaz sirf beauty cream. Hina mein maujood vitamin E beads ai jadid micro beads formula awaji skin ke banaye nikhri ai chamakdar sirf bin dihan mein. Dark spots ke kare khatam ai diye kudrati asli glow. D skin beauty cream asli glow har diye jo show. A product by Biocon International Pakistan.
1: Abhi budho pyar GA Hyderabad Matyari FM 91

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ओके जी ओके, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तावन से। यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही जना जो कि आपकी स्किन के लिए परफेक्ट हैं। अगर आप भी स्किन को अच्छा सा एक प्रोडक्ट देना चाहते हैं, वैसे भी कभी कभार अपनी स्किन केयर करना, अपने स्किन के लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, ये एक बहुत ही अच्छी सी बात होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आप तरह तरह के जो प्रोडक्ट लगाकर बड़े बेजार हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं और आपकी स्किन भी खराब हो चुकी है, तो आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपके चेहरे पर एक वाज़े नतायज जो है ना वो आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपको लगेगा कि हाँ भाई जान बात में दम तो था। सदरा भाजी जो बताती है वो बिल्कुल सही बताती है। तो आप भी इस्तेमाल करके देखिए, खूबसूरतियों का ख्याल रखिए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश दोनों चीजें मार्केट में अवेलेबल है, बस आप जाएंगे और परचेज करके आएंगे। अच्छा, ऐसा फर्ज कर लीजिए कि अगर नहीं भी अवेलेबल हुए अभी तक, तो उसके लिए आपको नंबर्स बता रही हूँ, उनके ऊपर आप राबता कर लिया करें। नंबर्स को लाजमी डायल कर लें, नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ से अवेलेबल कराएंगे या फिर कहाँ अवेलेबल होने चाहिए, कहाँ कहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं, ये तमाम बातें जो कि आप उनसे पूछ सकते हैं आराम से। तो मैसेज कीजिए या फिर उन्हें कॉल कीजिए और बताइए आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, या फिर अगर डी स्किन का फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो जल्दी से डायल कीजिए 0332738439 बुड़ी 300 73 84 83 209 आई बो नंबर आहे 03125025907 बुड़ी 312 50 25 970

भाई मोर ॾाढो भलो नालो आहे। ओके जी, हुसन में भी जोर रहा वरी मोर भी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चले नंबर के ऊपर रहा कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराइए, इस्तेमाल करते जाइए, खूबसूरत होते जाइए। अच्छा, ये हमारे साथ मौजूद हैं जी मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी बड़ी जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। और ये हमारे साथ शहजाद अली राजपर, अनंडो जमीर अली राजपर फ्रॉम बसीरो, अदी सिद्रा फैसन जी बारिश अच्छे पो मजा डिस जहां सांझा। ये न माना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मकसूद मला कहते मेरापुर खां, हेलो सिद्रा मुस्कान, हाँ जी मुझे मास्टर मजूर का गाना सुनाना। अच्छा तान थोड़ो लेट आया हो, पर शायद मैं तां जो मैसेज लेट पढ़ियो आई, दिसां थी अगर टाइम बची तो तां जी पसंद जो गानो हलाए वठूं था, ठीक है, न तो सुभाने बुधी वठंदासी। और ये हमारे साथ ही आपकी पूरे नेटवर्क को सलाम कबूल हो, शुक्रिया। 78 मोरी मीरपुर खास से राजा हमीरचंद है, किशोर कुमार, हीरा लाल, सुरेश और सुरेश इजी लोड वालो, सही सही, और अतिका क्यानी का मरवाड़ी छा था जो। अच्छा तां मरवाड़ी में मैसेज लिखियो, बाबा एतरी मौके नहीं दिया जेतरो तां मैसेज में लिखियो। सो थैंक यू तां जो मोहब्बत हुआ तां प्रोग्राम।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना सुन रहे हो. यहाँ पर फजली हमारे साथ मौजूद है, कहती है अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आर्य सिस्टर सिद्रा मुस्कान, कैसी हो डियर. सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को. सॉन्ग अच्छे प्ले करो जानू, नो सैड. ओके ओके, सैड गाने नहीं लगाएंगे आगे से, ऐसा भी हो वचन वर्तु. और कहती है चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करती रहिएगा.

अभी बात मुझे समझ आई। हाँ जी वही वही वही बिल्कुल बिल्कुल आप सही समझे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रही तो हमारे साथ जरा शेयर किया करें, शेयरिंग इज केयरिंग होती है। मुझे कन्ना में बुधाई शरीन आ गया था, बाजी असा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायूं था यार, असा डी स्किन जो फेस वॉश लगायूं था यार, असा इरादो कयो आए छो त हाँ इरादो भी तव्हां करे सघो था। इरादो को ना तॾहिं त वञी वठी ईंदा न, सो इरादो कयो बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो, तव्हांजी खूबसूरती खे सफ़ा ईअं वीआईपी बणाए छॾींदी ऐं तव्हांजे चेहरे ते चार चंड लॻाए छॾींदी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अॼु ई वञो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो ऐं वठी अचो।

अच्छा फहीम भाई कहते हैं भाऊ यो राणल जो धूल केड़ो आए हां राणल का पूछनो पंदो मुखा साथा पूछो मां न राणल के सुनाना न धूल के और अदो कहते हैं कि ही गानो आ बचपन का शादन में बुधा पे बाबा पुरानो गानो आए आई सब बचपन का बुधंदा अचन था कहते वैसे भैया आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगानी चाहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइएगा ठीक है। और अखलाक भाई कहते हैं कि इो केंजी शादी जो सेरो वा इो बाबा बस शादी केंजी भी कोनी असा मड़े यो हलाए छड़ियो है वैसे फरमाइश गाने जी हुई सो ये उना देखे डेडिकेट आए पर ये मड़े बुझूंदा शादी कोने का छड़ा जे के शोकरा ना वैसे ही चंदन शादी करो गानो वाला मतलब बूट चंदन कदे त थिंदी सो सा फील वठी बैठू मायरा कहती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपने यूज करी और आपको बड़ी अच्छी लगी डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्या बात है जी बहुत बढ़िया डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाकई अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप भी यही कहेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेड़ो कोई भी कोने बाबा छो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को मेडिकेटेड फार्मूलो है डी स्किन ब्यूटी क्रीम 2-in-1 क्रीम है यानी कि ही नाइट क्रीम था पर ही जदी तां इस्तेमाल कंदा तो तवां के फेशियल वारो रिजल्ट मिली सके तो अगर तां भी चाहता तो बाबा पैसा भी लाइक खर्च न थन आई असां के मुनासिब कीमतन में भलो प्रोडक्ट मिली वने टाइम भी बची वने पर तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो सफा परफेक्ट प्रोडक्ट आए तवा सबनी मानन जलाए आई तवा जी स्किन के सफा वीआईपी बनाए छदी तो तवा जी चेहरे जे जेके प्रॉब्लम्स आन सबनी के खत्म कदो आई तवा गोरा चिट्टा प्यारा प्यारा थी वेंदा सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आ ही डी स्किन फेस वॉश आ ही तवा जी स्किन के अगर पांजी खूबसूरती डियन चाहियो था तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई डी स्किन फेस वॉश पांजी चेहरे के गिफ्ट करे छड़ियो हां जी अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश अपने आप को जरा गिफ्ट कीजिए हां जी कदे कदे पांजो पान के तोहफो डियन भी डाढो जरूरी होंदो आए वरी अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई डी स्किन जो फेस वॉश पान के तोहफो दीजिए तो पोत बाबा वाह वाह थी वेंदी अच्छा हजार बार चाहे कोई पांजे पसंद जो एआई वारो गानो बुधाए तो ही वारो गानो अच्छा तो बुधूं था

अच्छा नांगर शहर हमें घोड़की से सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम भाई। अच्छा कॉपी वालों गानों बुधो सी जो तुझा बार बार कॉपी हुआ ना उन्हें हुक्का बार बार कॉपी वालों गानों न हलाये थी सके तो। अच्छा हजार भाई थैंक यू सो मच तुम से गड आयो और फरवा तुम्हें सजो प्रोग्राम पसंद आए सो थैंक यू

0: नाचे रे
1: आंधे तेरे प्यार में दिल ये नाचे रे। डे स्किन ब्यूटी क्रीम की बात हो रही है, डे स्किन ब्यूटी क्रीम के प्यार की बात हो रही है। आप भी डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे साथ जरा शेयर किया करें, और इसके अलावा पोस्ट को लाइक और शेयर करें। हाँ जी, पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें, इससे ये होता है कि भाई मोहब्बतें बढ़ती है, और ये मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, दोनों तरफ से निभाई जाती है। तो अगर मैं आपको डे स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताती हूँ तो आप बदले में पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है।

राधो से तो आजकल लोग हमें पहले इस्तेमाल करते हैं फिर विश्वास करते हैं. लगे ये तो जमाना जो ना थोड़ा बहुत होती वही हुआ है. पहले जो चीजें सीधी होती थी अब वो उल्टी है. सो असा सोचो से आयरा भला भला गाना गाई दो पर ये थी वही हुआ है. अखलाक भाई बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है. साजा तहांजो गानो आहे लिस्ट में बाबा पंध में आ जान आयो सबर कयो सबर.

ओके जी बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं अखलाक भाई कहते हैं डी स्किन जो यू तव्हांखे जेको नंबर ॿुधाईंदी न तव्हां मालूमात वठी सघो था ठीकु आहे सो नंबर जेको आहे ॿुधायो तव्हांखे प्रोग्राम में

ओके तो क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है जो कि हमने एंजॉय किया। और इसी के साथ साथ अगर आप भी खूबसूरत बनना चाहते हैं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपको मिल जाएगी वो खूबसूरती जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर नहीं मिलते तो जो आपको नंबर बताया प्रोग्राम के अंदर उसके ऊपर रब्ता कीजिएगा और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिएगा। और उसके बाद जो है ना आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो जाएंगे तो आप वहां से जाकर इजीली परचेज कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हाँ बिल्कुल आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा चादा चौधा आओ इन नंबर थी मिस कॉल या मिस कॉल न जो बाबा ये जो असा वो सर आए ना उनके थोड़ी कावड़ लगनी मिस कॉल चाहिए। लास्ट टाइम ये थी तो जिन जिन मानू मिस कॉल कई तो उनका नंबर ब्लॉक थी वया हुआ वरी मानू जन पे आदि ऐसा कॉल कयूं था तो असानी कॉल को नी खड़ी वने तो ता मिस कॉल न दियो ता डायरेक्ट कॉल की या एकड़ो नलो मैसेज छड़े दियो ठीक है मतलब समझी आउंदा छाती चवा।

अच्छा खूबसूरती त हर कोई चवंदो आहे न त असांखे मिले ज्यादा ज्यादा खूबसूरती मिले त तव्हां ज्यादा ज्यादा खूबसूरती हासिल करणु चाहियो था त ॿिया प्रोडक्ट अगरि तव्हां इस्तेमाल कयो पिया त हुननि खे गुड बाई टाटा चओ हाणे छो त हाणे मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इहो फ़ाइदो आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम मेडिकेटेड फार्मूलो आहे यानी कि अगरि तव्हां इस्तेमाल कंदा त तव्हांजी जेका खूबसूरती आहे न उहा सेफ बि रहंदी ऐं तव्हांजे हुस्न में इज़ाफ़ो बि ईंदो रहंदो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां बेफ़िक्र थी करे लॻाए सघो था इस्तेमाल कयो ऐं पंहिंजी खूबसूरती जो ख़्यालु रखो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो

जो बुनियाद बनाया वे रिवायती शोबन सा आलमी मंडी में बरामदात लाए ट्रंडकू खत्म क्यों वन अमेरिका ईरान सां जारी जंग में अरिड़हं फौजन जे मारजण ऐं 417 जख़्मी थियण जी तस्दीक करे छॾी अरिड़हं जंगी जहाज ऐं हेलीकॉप्टर बि तबाह थियण जो एतिराफ़ 30 ड्रोन बि तबाह ऐं हथियारनि जे ज़खीरे में घटताई थियण जो एतिराफ़ करे छॾियो ईरान सां जंग में थियल नुक़सान जी कांग्रेस पारां तयारु कयल रिपोर्ट जारी रिपोर्ट मूजिबि ईरान सां जंग सबबि अमेरिका जे हथियारनि वारे ज़खीरे में घटताई थी आहे जंहिं जी बहालीअ में रंडकूं आहिनि हथियारनि में वाध लाइ घणो वक़्तु लॻी सघे थो ईरानी हमलनि जे नतीजे में सऊदी अरब कुवैत बहरीन यूएई इराक उमान ऐं उर्दन में बि मौजूद अमेरिकी अॾनि खे बि वॾो नुक़सान पहुतो आहे जंगी जहाज़नि ऐं हेलीकॉप्टर जो बि वॾो नुक़सान थियो आहे तेल ऐं आबनारम जी सूरतहाल हाणे तब्दील थी चुकी आहे ईरान जा शर्त क़बूल करण ताईं ॻाल्हियूं न थींदियूं ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमेरिकी सदर कॾहिं चवे थो त ॻाल्हियूं न थींदियूं ऐं कॾहिं ॻाल्हियुनि लाइ तयार हुजण जा बयान ॾिए थो संदसि बयाननि ते कंहिंखे गुमराह न थियणु घुर्जे लबनानी घरू वज़ीर जी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां मुलाक़ात ॿिनि तरफ़नि लाॻापन समेत खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं ॿिन्ही अॻवाननि जो मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण ते तफ़ाक़ लबनानी घरू वज़ीर खे घरू वज़ारती आफ़ीस पहुचण ते सलामी बि ॾिनी वई आईन में इख़्तियार ऐं हदूं वाज़े थियल आहिनि इख़्तियारनि जे इस्तेमाल में आईन खे हर सूरत में मथां रखणु घुर्जे वफ़ाक़ी आईनी अदालत जे चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन ख़ान तकरीब खे ख़िताब कंदे चयो आहे त आईनी ते अमल करण खे मुआशिरे में इस्तेहकाम आणे सघिजे थो नए अदालती साल में इंसाफ़ जी फरहमी वारो अज़म वरजायूं था सिंध हुकूमत पारां लाड़काणो शादात कोर्ट ऐं कंबर में 18 सेप्टेम्बर लाइ पीपल्स बस सर्विस जा नवां रूट शुरू करण जो ऐलान सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील नामेमण जी सदारत ट्रांसपोर्ट ऐं मास ट्रांज़िट बाबति इजलास मीरपुर ख़ास में औरतुनि लाइ पिंक स्कूटीज़ जी विच बाबति अगभराई जो बि जाइज़ो वरितो वियो शर्जील नामेमण चयो आहे त हुकूमत शहरनि खे जदीद ऐं महफ़ूज़ ट्रांसपोर्ट फराहम करण लाइ क़दम खणी रही आहे पीपल्स बस सर्विस खे सिंध जे ॿियनि शहरनि ऐं ज़िलनि ताईं वधायो पियो वञे कराची के इलाके क्लिफ्टन में प्लाटन की गैरकानूनी अलाटमेंट वाले केस की अस्पताल अदालत में

0: शाह जी जमानत मंजूर कंदे 20,000 रुपयनि जा मज़रिकात जमा कराइण जो हुकुम ॾिनो। चक भरिसां हथियार बंदनि हथां बंद नारियूं मुबैना तौर अगवा वारसनि जो बाज़ियाबी लाइ एहतजाज। गोड ड्रिप डांवरीअ जे रहवासियुनि नारी कलसूम नाइट डांवरी जी बाज़ियाबीअ लाइ एहतजाज कयो। वारसनि चयो त बिरादरीअ जा हथियार बंद विनी औरतनि खे अगवा करे ज़बरदस्ती निकाह मथां निकाह कराए छॾियो आहे, खेनि बाज़ियाब करायो वञे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि सां विढ़ंदे शहीद थियल फौजी जवान जे मातली भरिसां सरकारी एज़ाज़ सां तदफ़ीन। फौजी जवान महबूब अली दस्ती जो मड़ अबाणे गोठ गाही दस्ती में फौजी एज़ाज़ सां दफ़नायो वियो। पाक फौज जे दस्ती ॾिनी ऐं क़बर ते फौज क़ौमी झंडो फड़कायो वियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी हाणे अवां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताईं सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताईं। जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: वफाकी हुकूमत पंहिंजी नाकामी जो बार अवाम मथां विझी रही आहे। पघारदार तबको पीएसटी वियो आहे। वफाकी हुकूमत खे दरख़्वास्त आहे त लेवी ख़तम करे। वफाकी हुकूमत होश खां कम वठे ऐं पेट्रोलियम लेवी ख़तम करे। पीपल्स पार्टी पेट्रोल अघनि में वाद ख़िलाफ़ अवाम सां गॾु बीठल आहे। अमरीका ईरान जंग सबब पेट्रोल समूरी दुनिया में महांगो थियो आहे। अवाम जी मुश्किलात खां आगाह आहियूं। हुकूमत अवाम खे रिलीफ ॾियण लाइ अवाम खे रिलीफ ॾेई रही आहे। वफ़ाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक चयो आहे त अवाम खे पेट्रोल जी फी लीटर ते 100 रुपियनि जे रिलीफ सां कुझ सहूलियत मिलंदी। वधीक कदम बि खणी रहिया आहियूं। वफ़ाकी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट मां पीटीआई बानी वारे केस जो समूरो रिकॉर्ड तलब करे वरितो। हाई कोर्ट खे बि साॻी ॾोही वारनि केसनि जो रिकॉर्ड मोकिलण जो हुकम। वफ़ाकी आईनी अदालत कैदियुनि जी निजी अस्पताल में इलाज वारी दरख़्वास्त ॿुधणी कई। अटॉर्नी जनरल जी अदालत खे पीटीआई बानी केस जो रिकॉर्ड तलब करण जी सज़ा। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान चयो त दरख़्वास्त गुज़ार मूजिब ग़रीब ऐं अमीर लाइ आईन ऐं कानून हिकु जहिड़ो हुजण घुर्जे। जस्टिस अली बाकर नज़फी अटॉर्नी जनरल खे मुखातिब थींदे चयो त छा अवां सुप्रीम कोर्ट में एतराज़ वारियो हो। अटॉर्नी जनरल जवाब ॾींदे चयो त सुप्रीम कोर्ट असांखे नोटिस करण बदिरां हुकुम जारी कयो। आईन जी तशरीह जो बि इख़्तियार हाणे वफ़ाकी आईनी अदालत वटि आहे। जस्टिस आमिर फारूक चयो त सुप्रीम कोर्ट में उल्तवा हेठि केस फौजदारी नोयत जो आहे। असां वटि केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे फैसले ख़िलाफ़ आयो आहे। जस्टिस अली बाकर नज़फी चयो त सवाल ही आहे त हाणे आईन जी तशरीह ऐं बुनियादी हक़नि वारा केस केर ॿुधी सघे थो। वज़ीर-ए-आज़म मुल्की बरामदी अमल खे वधीक आसान तेज़ ऐं शफ़ाफ़ बणाइण जी हिदायत करे छॾी। बरामदादी सनअतनि लाइ जदीद टेक्नोलॉजी तहक़ीक़ ऐं जिदत खे हथी ॾियण जो हुकुम। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि मुल्की बरामदात वधाइण ऐं मुआशी तरक़ी खे तेज़ करण बाबति इजलास। शहबाज़ शरीफ़ चयो त बरामदात में वाध खे मुल्की मुआशी तरक़ी जो बुनियाद बणायो वञे। रिवायती शोबनि सां गॾु ॿियनि शोबनि खे बि आलमी मंडी में बरामदात लाइ तयार कयो वञे। रंडकूं ख़तम कयूं वञनि। अमरीका ईरान सां जारी जंग में 18 फौजियुनि खे मारजण ऐं 417 ज़ख़्मी थियण जी तसदीक करे छॾी। 18 जंगी जहाज़ ऐं हेलीकॉप्टर बि तबाह थियण जो एतराफ़। 30 ड्रोन बि तबाह ऐं हथियारनि जे ज़खीरे में बि घटिताई थियण जो एतराफ़ करे छॾियो। ईरान सां जंग में थियल नुक़सान जी कांग्रेस पारां तयार कयल रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट मूजिब ईरान सां जंग सबब अमरीका जे हथियारनि वारे ज़खीरे में घटिताई थी आहे, जंहिंजी बहाली में रंडकूं आहिनि। हथियारनि में वाध लाइ घणो वक़्त लॻी सघे थो। ईरानी हमलनि जे नतीजे में सऊदी अरब, कुवैत, बहरैन, यूएई, इराक, ओमान ऐं उर्दन में मौजूद अमरीकी अॾनि खे बि वॾो नुक़सान पहुतो आहे। जंगी जहाज़नि ऐं हेलीकॉप्टर जो बि वॾो नुक़सान थियो आहे। सऊदी अरब जो वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान मिस्र पहुची वियो। मिस्री सदर अल सीसी मोहम्मद बिन सलमान जो एयरपोर्ट ते आदर भाव कयो। ॿिन्ही अॻवाणनि में ख़ते जी सूरतहाल ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई वई। मोहम्मद बिन सलमान मिस्र रवानगी खां पहिरीं काबीना खे बि एतमाद में वरितो हो। तेल ऐं आपने हरबूस जी सूरतहाल हाणे तब्दील थी चुकी आहे। ईरान जा शर्त क़बूल करण ताईं ॻाल्हियूं न थींदियूं। ईरान जी क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार मोहसिन रज़ई चयो आहे त अमरीकी सदर कॾहिं चवे थो ॻाल्हियूं न थींदियूं ऐं कॾहिं ॻाल्हियुनि लाइ तयार हुजण जा बयान ॾिए थो। संदसि बयाननि ते कंहिंखे गुमराह न थियणु घुर्जे। पिमसाने में इंतज़ामी ग़फ़लत साबित। बिजली में ख़राबी पाए जो कारण करार। पिमसाने जी जांच लाइ वज़ीर आज़म पारां जोड़ियल कमेटी जी रिपोर्ट चयो आहे त ॿ नंबर एसी जी सप्लाई लाइन मां बाहि लॻण जा इम्कान वधीक आहिनि। बाहि कंहिं तकरीबकारी या इन्क्यूबेटर मां लॻण जो इम्कान नाहे। नर्सरी में दूहे ते वजंदड़ अलार्म बि मौजूद न हो। ॿार हिफ़ाज़ती निज़ाम जी नाकामी सबब फौत थिया। 10 बेडनि ते वधल वार्ड में 15 ॿार इलाज हेठि हुआ। अलार्म ऐं एग्ज़िट सिस्टम खे फॉल करण जी बि सिफ़ारिश। आईन में इख़्तियार ऐं हदूं वाज़े थियल आहिनि। इख़्तियारनि जे इस्तेमाल में आईन खे हर सूरत में मथां रखणु घुर्जे। वफ़ाकी आईनी अदालत जी चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो त آئین تے عمل کرے معاشرے میں استحکام آنے سکجے تو نئی عدالتی سال میں انصاف کی فراہمی بارو عزم ورجائیں تھا کراچی کے علاقے کلپٹن میں پلاٹن کے غیر قانونی الاٹمنٹ والے کیس کے احتساب عدالت میں بدھری وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال بیا پیش نہ تھے عدالت وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال بین کے نوٹس جاری کر چڑیا سبور جوابدار کے پہلی اکتوبر سے طلب کرے وتو نو دیرو بھرسا پرانی تکرار تا حاضر تے ویدر بجنا قتل سم شاخ وٹ پرانی تکرار تا ہتھیار بندن فائرنگ کرے شہید کڑیو حاکم کڑیو کے قتل کیو پولیس موجب واقعو کڑیو خروس کوکر برادری کی دنیا میں ہلندڑ پرانی تکرار تا

0: चावड़ी जे रवासियन नारी कुलसुम ऐं नाहिद चावड़ी जी बाज़ियाबी लाइ एतिजाज़ कयो। वारिसन चयो त बरादरी जा हथियारबंद ॿिन्ही औरतुनि खे अगवा करे ज़बरदस्ती निकाह मथां निकाह कराए छॾियो आहे। खेनि बाज़ियाब कराए वञे। पुनरी में ज़हरीली लस्सी पीअण सबब ॿारनि समेत नव घर भातियुनि जी हालत ख़राब। अस्पताल मुंतकिल। नबीसर में चांवरनि सां गॾु लस्सी पीअण सबब सत ॿारनि समेत नव घर भाती बेहोश थिया। क़ीमत भील माना भील पूजा मीना पूनम हरियान हिना तेजान ऐं कुमेली खे अस्पताल नियो वियो। इलाज जारी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी। हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।
5: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
6: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
5: GAFM नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: It's 6 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: Hak Sach Jo Awaaz, Geet Sangeet Jo Awaaz, Jee Hyderabad Matiyari FM 91.6, Sindh Jo Awaaz, Udanda Raho.
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
0: आप
3: भी ग्राउंड कयूं वेंदियूं जो मोचन चरा आचर मोकल हूंदी सरकारी मुलाज़िमन खे भी रोटेशन तहत ऑफिस में घुराइण ते गौर सदारत हेठ थींदड़ इजलास में कयो वेंदो सिंध असेंबली पेट्रोल जूं क़ीमतूं घटाइण बाबति ठहराउ मंसूर करे वरितो एम क्यू एम पारां मुख़ालफ़त सीनियर वज़ीर शजील नामेवंद पारां पाकी हुकूमत खां पेट्रोल ते लागू लेवी ख़तम करण जो मुतालबो शजील नामेवंद चयो त 2008 में पेट्रोल महांगो थियण ते एम क्यू एम पीपल्स पार्टी जी हुकूमत खां धार थी वई हुई हाणे बि एम क्यू एम वफ़ाकी हुकूमत जी इतिहादी आहे हुकूमत सां मामले ते ॻाल्हाए पघारदार तबिको पीसी वियो आहे वफ़ाकी हुकूमत होश खां कम वठे ऐं पेट्रोलियम लेवी ख़तम करे सूबाई वज़ीर सईद घनी चयो आहे त वफ़ाक मां नौकरी ख़तम थियण जे ख़ौफ़ खां एम क्यू एम ठहराउ जी मुख़ालफ़त कई हुकूमत पारां पेट्रोल ते वाम खे ॾिनल रिलीफ टैक्स खां वधीक आहे लेवी 80 रुपया ऐं वज़ीर आज़म 100 रुपयनि जो रिलीफ ॾिनो आहे वफ़ाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक चयो आहे त मुल्क वॾी गाॾियुनि वारो जो बि आहे पर वज़ीर आज़म सभ खां पहिरीं नंढियुनि गाॾियुनि वारनि खे रिलीफ ॾिनो आहे पेट्रोल ते रिलीफ वारी स्कीम इस्लामाबाद मां शुरू थी वई आहे ॿिए मुल्क में बि जल्द शुरू थी वेंदी वज़ीर आज़म जेको पेट्रोल ते रिलीफ ॾिनो आहे इहो टैक्स खां वधीक आहे जंग ख़तम थियण सां समूरी दुनिया खे रिलीफ मिलंदो बाबुल मंडप जी बंदिश जा नतीजा तबाह कंदड़ निकिरी सघनि था कतर दुनिया खे ख़बरदार करे छॾियो कतरी पदेही वज़ारत जे अमलदार इब्राहिम हाशमी चयो आहे त दुनिया पहिरीं अबना अरमूज़ जी बंदिश भोगे रही आहे बाबुल मंडप खे साॻी सूरतहाल मां न गुज़रनि घुर्जे मसइले जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए कढियो वञे वफ़ाकी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट मां पीटीआई पानी वारे केस जो समूरो रिकॉर्ड तलब करे वरितो हाई कोर्ट खे बि साॻी नोयत वारनि केसनि जो रिकॉर्ड मोकिलण जो हुकम वफ़ाकी आईनी अदालत कैदियुनि जे निजी अस्पताल में इलाज वारी दरख़्वास्त ॿुधणी कई अटॉर्नी जनरल जी अदालत खे पीटीआई पानी केस जो रिकॉर्ड तलब करण जी इस्तदा चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान चयो त दरख़्वास्त गुज़ार मुझे फरीफ ऐं अमीर लाइ आइन ऐं कानून हिकु जहिड़ो हुजणु घुर्जे जस्टिस अली बाकर नज़फ़ी अटॉर्नी जनरल खे मुखातिब थींदे चयो त छा उहा सुप्रीम कोर्ट में एतिराज़ वारियो हो अटॉर्नी जनरल जवाब ॾींदे चयो त सुप्रीम कोर्ट असांखे नोटिस करण बदिरां हुकुम जारी कयो आइन जी तशरी जो बि इख़्तियार हाणे वफ़ाकी आइनी अदालत वटि आहे जस्टिस आमिर फारूक चयो त सुप्रीम कोर्ट में अल्तबा हेठि केस फ़ौजदारी नोयत जो आहे असां वटि केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ आयो आहे जस्टिस अली बाकर नज़फ़ी चयो त सवाल ही आहे त हाणे आइन जी तशरी ऐं बुनियादी हक़नि वारा केस केर ॿुधी सघे थो

0: वज़ीर आज़म मुल्की बरामदी अमल के आसान तेज ऐं शफ़ाफ़ बणाइण जी हिदायत करे छॾी। बरामदी सनअतनि लाइ जदीद टेक्नोलॉजी तहक़ीक़ ऐं जिदत खे हथी ॾियण जो हुकुम। वज़ीर आज़म शफ़ाफ़ सर्विस अदालत तहत मुल्की बरामदात वधाइण ऐं मुआशी तरक़ी खे तेज़ करण बाबति इजलास। शहबाज़ शरीफ़ चयो त बरामदात खे वाधि खे मुल्की मुआशी तरक़ीअ जो बुनियादु बणायो वञे। रिवायती शोबनि सां गॾु ॿियनि शोबनि खे बि आलमी मंडी में बरामदात लाइ तयार कयो वञे। रंधकू ख़तम कयो वञे। अमरीका ईरान सां जारी जंग में 18 फौजियुनि जे मारजण ऐं 417 ज़ख़्मी थियण जी तसदीक करे छॾी। 18 जंगी जहाज ऐं हेलीकॉप्टर बि तबाह थियण जो एतराफ़, 25 ड्रोन बि तबाह ऐं हथियारनि जे ज़खीरे में बि घटिताई थियण जो एतराफ़ करे छॾियो। ईरान सां जंग में थियल नुक़सान जी कांग्रेस पारां तयार कयल रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट मूजिब ईरान सां जंग सबबि अमरीका जे हथियारनि वारे ज़खीरे में घटिताई थी आहे, जंहिंजी बहाली में रंडकूं आहिनि। हथियारनि में वाध लाइ घणो वक़्तु लॻी सघे थो। ईरानी हमलनि जे नतीजे में सऊदी अरब, कुवैत, बहरैन, यूएई, इराक, ओमान ऐं उर्दन में मौजूद अमरीकी अॾनि खे बि वॾो नुक़सान पहुतो आहे। जंगी जहाज़नि ऐं हेलीकॉप्टर जो बि वॾो नुक़सान थियो आहे। सऊदी अरब जो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मिस्र पहुची वियो। मिस्री सदर अल सीसी मोहम्मद बिन सलमान जो एयरपोर्ट ते आदर भाव कयो। इन्हीं अॻवाननि में ख़ते जी सूरत हाल ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई वई। मोहम्मद बिन सलमान मिस्र रवानगी खां पहिरीं काबीना खे बि एतमाद में वरितो हो। बसो रातियुनि खां रस्तनि ते मौजूद ईरानी अवाम दुश्मन जी शिकस्त खे साबित करे छॾियो आहे। ईरान जी दिफ़ाई सलाहियत बि अवाम जे अज़म सां गॾियल आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकर कारीबाफ चयो आहे त दबाउ या पाबंदियूं ईरानी अवाम जे वतन सां मोहबत घटाए नथियूं सघनि। टिनि सानहे में इंतज़ामी गफ़लत साबित। बिजली में ख़राबी पाए जो कारण करार। वज़ीर आज़म जी जांच कमेटी समूरनि जवाबदारनि खे आजो करे छॾियो। टिनि सानहे जी जांच लाइ वज़ीर आज़म पारां जुड़ियल कमेटी जी रिपोर्ट में चयो वियो आहे त एसी जी सप्लाई लाइन मां बाहि लॻण जा इम्कान वधीक आहिनि। बाहि कंहिं तकरीफ़कारी या इन्क्यूबेटर मां लॻण जो इम्कान न आहे। नर्सरी में दूहे ते वॼंदड़ अलार्म बि मौजूद न हो। ॿार हिफ़ाज़ती निज़ाम जी नाकामी सबब फोत थिया। अलार्म ऐं एग्ज़िट सिस्टम खे फॉल करण जी बि सिफ़ारिश कई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां के परेशान थियण की का भी जरूरत

0: जी सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुमो मोकला है। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी MCB बैंक जे सामू नया पुल हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770।
1: It's 6 PM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har diya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Hak sach jo awaz, geet sangeet jo awaz. Ye Hyderabad Matiyari FM 91.6. Sindh jo awaz. Budhanda raho.
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज
4: GA FM नेटवर्क
5: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: Hak Sach Jo Awaaz, Geet Sangeet Jo Awaaz, Jee Hyderabad Matyari FM 91.6, Sindh Jo Awaaz, Udanda Raho.
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हरी 1.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस जी एफ एम

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच गीत संगीत जो आवाज मटियारी उदरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: जो आदर भाव थे मुलाकात दौरान वितरपन लागापन ए खत्ते की सूरत हाल से गालू कई हुई बाबुल मुंदब की बंदिश या नतीजा तफाक कंदड़ निकली सकन था कतर दुनिया के खबरदार करे छो कतरी परडेही वजारत के अमलदार इब्राहिम हाशमी चया है दुनिया पहरे ही आबना हरमुज की बंदिश भोगे रही है बाबुल मुंदब के सागी सूरत हाल में न गुजरण घुर्जे मसले जो हल गाल जरिए कढ़ो वने

अमरीका ईरान सां जारी जंग में 18 फौजियुनि जे मारजण ऐं 417 ज़ख़्मी थियण जी तस्दीक करे छॾी। 18 जंगी जहाज ऐं हेलीकॉप्टर बि तबाह थियण जो एतराफ़, 30 ड्रोन बि तबाह ऐं हथियारनि जे ज़खीरे में बि घटिताई थियण जो एतराफ़ करे छॾियो। ईरान सां जंग में थियल नुक़सान जी कांग्रेस पारां तयार कयल रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट मूजिबि ईरान सां जंग सबब अमरीका जे हथियारनि वारे ज़खीरे में घटिताई थी आहे, जंहिंजी बहाली में रंडकूं आहिनि। हथियारनि में वाध लाइ घणो वक़्तु लही सघे थो। ईरानी हमलनि जे नतीजे में सऊदी अरब, कुवैत, बहरैन, यूएई, इराक, ओमान ऐं उर्दन में मौजूद अमरीकी अॾनि खे बि वॾो नुक़सान पहुतो आहे। जंगी जहाज़नि ऐं हेलीकॉप्टर जो बि वॾो नुक़सान थियो आहे।

सोर आतियन खां रस्तनि ते मौजूद ईरानी अवाम दुश्मन जी शिकस्त खे साबित करे छॾियो आहे। ईरान जी दिफ़ाई सलाहियत बि अवाम जे अज़म सां गंढियल आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकर कारीबाग चयो आहे त दबाउ या पाबंदियूं ईरानी अवाम जी वतन सां मोहबत घटाए नथियूं सघनि। वफ़ाक़ी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट मां पीटीआई वानी वारे केस जो समूरो रिकॉर्ड तलब करे वरितो। हाई कोर्ट खे बि साॻी नोयत वारनि केसनि जो रिकॉर्ड मोकिलण जो हुकुम। वफ़ाक़ी आईनी अदालत कैदियुनि जी निजी अस्पताल में इलाज वारी दरख़्वास्त ॿुधणी कई। अटॉर्नी जनरल जी अदालत खे पीटीआई वानी केस जो रिकॉर्ड तलब करण जी इस्तदा। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान चयो त दरख़्वास्त गुज़ार मूजिब ग़रीब ऐं अमीर लाइ आइन ऐं कानून हिकु जहिड़ो हुजणु घुर्जे। जस्टिस अली बाकर नज़वी अटॉर्नी जनरल खे मुख़ातिब थींदे चयो त छा अव्हां सुप्रीम कोर्ट में एतिराज़ वारियो हो। अटॉर्नी जनरल जवाब ॾींदे चयो त सुप्रीम कोर्ट असांखे नोटिस करण बदिरां हुकुम जारी कयो। आइन जी तशरीह जो बि इख़्तियार हाणे वफ़ाक़ी आइनी अदालत वटि आहे। जस्टिस आमिर फारूक चयो त सुप्रीम कोर्ट में अल्तवा हेठि केस फौजदारी नोयत जो आहे। असां वटि केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे फैसले ख़िलाफ़ आयो आहे। जस्टिस अली बाकर नज़वी सवाल कयो त हीउ आहे त हाणे आइन जी तशरीह ऐं बुनियादी हक़नि वारा केस केर ॿुधी सघे थो।

वज़ीर आज़म मुल्की बरामदी अमल के वधीक आसान तेज ऐं शफ़ाफ़ बणाइण जी हिदायत करे छॾी। बरामदी सनअतन लाइ जदीद टेक्नोलॉजी तहक़ीक़ ऐं जिदत खे हथी ॾियण जो हुकम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठि मुल्की बरामदात वधाइण ऐं माशी तरक़ी खे तेज़ करण बाबति इजलास। शहबाज शरीफ चयो त बरामदात में वाध खे मुल्की माशी तरक़ीअ जो बुनियाद बणायो वञे। रिवायती शोबनि सां गॾु ॿियनि शोबनि खे बि आलमी मंडी में बरामदात लाइ तयार कयो वञे। रंडकू ख़तम कयूं आहिनि।

बारिश बर्दाश्त न कई वेंदी। सिंध जी वहदत जाग्राफियाई हदनि ऐं दरिया जे तहफ़ुज़ लाइ जिदोजहद जारी रहंदी। सिंध पाकिस्तान जे क़याम में अहम किरदार अदा कयो ऐं सिंध वासियुनि जी पाकिस्तान पंहिंजी तारीख़ लॻे थी।